रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोतियों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा, वाह वाह। आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा, खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा। आप दी सोच दियां खिड़कियां खड़का के आ सजनो दिलां ते दस्तक देण वाला। तुहाडे दिलां दी धड़कण वधाउण वाला, पाख दे मसले लिआउण वाला, पंजाब दी सैर करवाउण वाला, हक सच दे ढोल वजाउण वाला, कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, भाई मथियां ते त्यूड़ियां ते पैणियां ही ने जदों खरियां खरियां सुनाईयां गईयां। कईयां मथियां ते त्यूड़ियां, लबां ते हासे लिआउण वाला। तुहाडी सोच च भड़थू पाउण वाला ते खरियां खरियां सुनाउण वाला। पंजाब अते पंजाबियत दा पहरेदार, मिठे बोलां नाल लै आप दे दिलां ते राज करन वाला। ए है जी परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट। जी हां, परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट इज वन एंड ओनली वन इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स परवाज रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन। Expose yourself hard, you see, it's wonderful, lovely, your silly world, with your own experience and watching eyes. To see a samsar nu kis tarah rehnde ho dosto, agar tusi kise vishay te galbaat karni chahunde ho, you most welcome. Sade naal contact New York, Frankfurt, ya India de vich kar sakde ho, assi tuhanu welcome karange. पर तुहाडे विचार न्यूट्रल होने चाहिए। दोस्तों, आज मैं पहले आवर विच कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है सब से तैयार कर सकिया, पर अपने समाज सरकार ते देश दीआं गल्लां बातां करांगा। अगले आवर विच साडे ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ, ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਵਿਊਅਰਸ। That's the beauty of your lovely radio station. Welcome, dosto. That's the beauty of your

यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूब सुरत सुरते ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाह वाह।

वारिवा, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी हुई। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जाण करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ उह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गुरूर हुंदा है, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा है, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी,

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूब सुरत सुरते ए मोहब्बत दा पैगाम देन वाला दोस्ती अते प्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाह वाह।

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खट पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 858-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह ठक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा टाइम चेंज हो गया सी रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे आई है सो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच लो कुछ गीत सुनदे हैं जी पहला गीत आपां सुनदे हैं बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी ते फिर आपां अगले गीत दे नाल चालू करांगे जी

0: दीक्षा की कोई मोक्ष हैगा या यो देकर के ऐसा कुछ हो सकता है। ड्राइव परसिस्टेंट टफ जो भी कोई इस तरह की कंडीशन होती है खंग लगी नहीं वेलकम नहीं कुछ ऐसा नहीं हैगा पर हार्ट नु कोई प्रॉब्लम आ गई है उस वेले हार्ट काम नहीं कर रहा बैकलॉग जिम्मे रह जाता भी फेफड़े तो भेज ही रहने तुम ऑक्सीजन हूं तुम अगो लैंड की समर्था च नहीं यार नहीं मैं इना नहीं कम कर सकता ओवरलोडेड हो गया उस वेले एक जेड़ा बैकलॉग फेफड़े च लगता है ओदे करके ड्राई कफ आम तौर पर होनी शुरू हो जाती है जी रैपिड ते इररेगुलर बीट होनी शुरू हो जाती है पल्स फास्ट हो जाती है पल्स भी इररेगुलर हो जाती है ब्रीदिंग दी रेट जेड़ा है वो तेज हो जाता है और ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती डीप ब्रीदिंग पूरी तरह चीमा साहब बल्द ज्यादा भजन ना खूह जोया हो टिड्डा बहुता पानी जेड़ा बाहर डुबी जाता है
1: बिल्कुल खाली खाली अद्धिया खाली
0: खाली आउंदिया ने और यही काम जेड़ा आ फेफड़िया नु भी करना पै रहा यही काम जेड़ा आ ये साडे हार्ट नु भी करना पै रहा उस नु कंपनसेट करन दी खातर ये सारा कुछ उस नु करना पै रहा है तो ये सारिया आम तौर ते जिहड़ियां निशानियां हन ये हार्ट दियां हन अजे होर भी बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां असीं आम तौर ते वेख सकदे आ कि भाई इहदे विच होर किहड़ियां किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां बाहरी तौर ते असीं वेख सकदे आ उहनां नु फिर आपां अगले प्रोग्राम दे विच डिस्कस करांगे पर अगले प्रोग्राम दे विच तुहाडे सवाल दा हल पहला मैं जरूर करांगा मैनूं याद जरूर करवा दिओ जिस सराइसिस दे संबंध विच ठीक है। सो भाई अज दा प्रोग्राम दा समां बहुत थोड़ा रह गया मैं गुरदीप सिंह संधू तुहाडा होम्योपैथी कंसल्टेंट तुहाडी सेवा च हाजर हां 9701 सेरा एन कोट डबलन कैलिफोर्निया 94568 फोन नंबर 408-687-1899 किसी भी वेले किसी बीमारी के संबंध में समझना चाहते हो या सैकंड ओपीनियन लेना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो 408-687-1899 और अगर तुम किसी बीमारी का होम्योपैथिक तरीके ने इलाज करवाना चाहते हो तो तभी कॉल कर सकते हो 408-687-1899। अगर कोई इस तरह की बीमारी है जी बोल के तुम नहीं दसते तो तुम देख के दसना चाहते हो तो ईमेल भेज सकते हो होम्यो मेडिसन homeomedicine@yahoo.com तो किसी भी वेले किसी बीमारी के संबंध में जानकारी ले सकते हो यदि कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं हैगी किसी भी वेले कॉल करके अपना सुझाव मेरे को ले सकते हो मेरे 52 साल के एक्सपीरियंस के उपरो जो फायदा उठा सकते हो वो उठा लो पर नाल दी नाल एक रिक्वेस्ट असि हमेशा करते हैं कि तुसी अगर इन प्रोग्रामा दे विच तुहानू कोई गल्लां लाहे हुण दिसदियां ने कि साडे फायदे वधन हो रही ने ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਭਾਗ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਰੰਗ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ।

ऑफ कोर्स प्रभात रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ आर यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली फोन कॉल अवे